नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद ज